भाई जोगा सिर करना आवाज पई सच पौड़ी तू पै ऐसा किता पिछे मुड़ पे मना कोई तेन वेखदा पे वापस आ गई। थोड़ी देरी के बाद प्यारी सत्संग भाई जोगा से फिर आंदे फिर पौड़ी से पैर रखते हैं फिर कन्ना।

अजे भी कोई वेचना पे मैं तो समझिया कि हूं कोई नहीं वेचना पर अजे भी कोई टक रही है मना जरा खैर तीसरी वेरी भाई जोगा सिंह फिर आवाज केड़ी

जिन कल राखी मेरी जिम बुलावे तुम बोल है स्वामी, जिम बुलावे तुम बोल है स्वामी, कुदरत कौन हमारी, साध संग नानक जस गायो।

मांस दे बहर न पावे कछु उपाव मुक्त का कर रहे। गुरु जी कहते हैं कुछ उपा कर लै। गुरबाणी जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी है, ये सारे भगतों की बाणी, संतां की बाणी, गुरुआं की बाणी, भगत रविदास, भगत कबीर, बाबा फरीद जी, सारिया की बाणी गुरु महाराज ने एकत्र की है। ये सारे संतां भगतां दे सतपुरशां दे वचन हैं, गुरुआं दे वचन जो हैं। सो मानस दे बाहर ना पावे कछु उपाओ मुक्त का कर ले। कहिंदे कोई अपना उपा कर ला, कोई जतन कर ला। ये जो तेनू वक्त मिलिया, बहुत गोल्डन चांस मिलिया है, बल्कि बहुत ही अमोलक समा मिलिया है। इस समय दे विच सुनिया सी जे ये वक्त हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, तो मनुखा जन्म दे विच ही हो सकता है। 84 लख जून दे विच, किसे जून दे विच ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुंदा, ना ही गुरु मिलता है, ना ही सत्संगत मिलती है, ना ही परमेश्वर का नाम मिलता है, ना ही इस दे अंदर कुंडलनी जागृत हो सकती है। बोल सतनाम श्री वाहेगुरु। तीन तरह की कृपा होंदी है, तीन तरह की मेहर होंदी है। एक तो अकाल पुरख की मेहर है, अकाल पुरख की मेहर है। अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर जो सृष्टि करता है, उसकी क्या मेहर है, सानू उसने ये अमोलक जन्म दे देता है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। ब्रेन दे देता है, दिमाग दे देता है, कितना तेज दिमाग है, कितना कुछ सोचता है। इस दे विच अपने साथ संगत की ये दिमाग जो ये सुंदर घाड़त है, ये सुंदर रचना है, शरीर की रचना है, सृष्टि की रचना है, जां फिर ये अमोलक नेत्र अखां दे दित्तियां हन, हथ पैर दे दित्ते हन, जबान दे दित्ती है, कन्नां विच सुन दी शक्ति दे दित्ती है, ये सब अकाल पुरख की कृपा है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। इस जीव दे उते अकाल पुरख की कृपा हुई है जो ये मनुखा जन्म दिता है। इस नूं देवते भी तरसदे हन जो साडे उते अकाल पुरख ने यह कृपा की है, मेहर की है। गुरु जी कहिंदे ने रामैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। रामैया के गुण चेत प्राणी, उस परमात्मा ने गुणा नूं कुछ याद कर, अकिरत घाना मन कुछ याद कर, चेते कर। रामैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। ते क्या तेरी जो जड़ है, कित्थों तू पैदा होया है, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, की दिस रहा है, क्या नजर आ रहा है, तेरा कितना सुंदर शरीर उस वाहिगुरु परमेश्वर ने बनाया है। थोड़ा जा फर्क पै जाए देख लो कितना औखा हो जाता है। डॉक्टरों को भजे फिरदे असि, हस्पतालों भजे फिरदे ही, अखा च थोड़ा जा फर्क पै जाता, कन्ना च सुन दी, दंदा दी, होर सास सुन, कितनी कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, कितना औखा हो जाता है जिसने सारा शरीर दिता है। राम अय्या के गुण चेत्र पावे, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सिवार सिगारिया। देखो पंजे तत् उसने किवें इकट्ठे किए हैं, पंजा तत्ता का कितना सुंदर पुतला तैयार किया है, जिस दे विच ए रूप आई है, आत्मा पाई है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। साहिब का फरमाया जियो देही विच आए पाया, जो सो उसका हुक्म हुंदा है। इस रूह नू आत्मा नू ए पंज तत्त दा पुतला, पंज तत्तां दा इह घर, पंज तत्तां दी इह गड्डी, पंज तत्तां दा इह रथ शरीर इह प्राप्त होया। इह अकाल पुरख दी कृपा है, अकाल पुरख दी मेहर है। कितना दिमाग कम करदा है, किवें कम कर रहा है, इह माता पिता दी कृपा तां नहीं है, इह तां अकाल पुरख दी कृपा है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। शरीर दी रचना तां उसने कीती है। सो अकाल पुरख वाहिगुरु की कृपा है जो उसने सानू ये हथ पैर दे दते हैं, अखां दे दतियां हैं, ये शरीर दे दता है, शरीर दे विच चलन की शक्ति पा दती है, ये रूह नू ये जड़ा है ये शरीर बख्श दता है। ये अकाल पुरख की कृपा है, ये वाहिगुरु परमेश्वर की कृपा है, इस विच अपनी कोई ताकत नहीं है। ते दूसरी कृपा जीव की मनुख की अपने आप ते हुंदी है कि यह प्रभु का परमेश्वर का नाम जपे, सत्संगत करे, सेवा करे। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। अपने आप ते कृपा करे, कुछ मेहनत करे, उद्यम करेंदे ज्यों तू कमाव दियां सुख पुंच, ध्यान दियां तू प्रभु में नानक उतरी चिंत। यह अपने आप ते कृपा करे, संगत विच जावे, वैसे यह भी कृपा वाहेगुरु परमेश्वर दी है, संगत विच जो सत्संगत दी प्राप्ति है। फिर इसने क्या कृपा करनी है, गुरु दे वचना नूं कमाउणा है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। अपने आप ते कृपा करनी है। दूसरी कृपा
ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਨ ਚ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਨ ਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਕਿਰਤ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੀਸਰੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੰਦਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਪਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਿ।

0: गुरु जी कहेंगे नव खंडन को राज कमावे अंत चलेगो। छोटे मोटे औहदे, छोटे मोटे धन पदार्थ, थोड़ा बहुत लाख करोड़ है, छोटी गल है। गुरु जी कहते हैं कोई छोटे मोटे खेते का कोई मालिक बन जावे, कोई अफसर बन जावे, कोई होर कुछ होर बन जावे, बड़ी छोटी गल है। जे नौवां खंडा का भी इस नूं राजा बना दिता जावे, नौ खंडा का राज ए मालिक भी बन जावे, परंतु गुरु तो बिना, परमात्मा के नाम जप तो बिना, जपण तो बिना अंत चलै गो हार ही, अंत नूं हार जांदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: मनुखा जन्म की बाजी हार जांदा है, अंत चलै गुहारी। फिर कीड़ी ते राजे दे विच परमेश्वर दी दरगाह दे विच कोई फर्क नहीं है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: कोई फर्क नहीं है ते साध संगत भगवान श्री रामचंद्र त्रेते देवता वशिष्ठ जी दे साध संगत विच बैठे हन ते साध संगत आप दे मुखारविंद तो मिना मिना हासा निकल रहा है, मुस्कुरा रहे हैं आप। वशिष्ठ जी का ध्यान श्री राम जी वल गया, पुछते हैं बेटा की गल है, तुसी तो मर्यादा पुरशोत्तम हो, पता है तुहानू हर मर्यादा का, सत्संग की मर्यादा की हुंदी है, साधुओं को जाण दी बैठण दी की मर्यादा हुंदी है, तुसी क्यों हस रहे हो? बिना कारण तो सियाणा पुरश नहीं हसया करता, बिना कारण तो सियाणा पुरश नहीं हसदा है, ते तुसी क्यों हस रहे हो? कहिंदे गुरदेव मैं बिना कारण तो नहीं हस रहा। कहिंदे फिर की कारण है, तुसी क्यों हस रहे हो? कहिंदे मैं कीड़े वल देख के हस रहा हूं। कहिंदे कीड़े वल देख के हसना, कीड़े वल देख के हसना, कहिंदे इसकी लत टुटी हुई है, कीड़ा उपर चढ़ने की कोशिश करता है फिर डिग पैंदा है, इसकी बेचारे की लत टुटी हुई जां दो लत्तां टुटियां हुई हैं ते उपर चढ़ने की कोशिश करता है, कंध ते जां किसी दीवार ते जां किसी चीज ते चढ़ने की कोशिश करता है, बेचारा फिर तिलक जाता है, डिग पैंदा है, फिर चढ़ने की कोशिश करता है, फिर डिग पैंदा है। कहिंदे इस विच हसण की क्या गल है? कीड़ा है बेचारा, लत्तां टुटियां हुई हैं ते इस करके फिर हुण चढ़दा है, फिर डिग ही पवेगा। इस विच हसन की क्या गल है? श्री राम जी कहिंदे हन गुरदेव मैं इस करके हसदा, एक कीड़ा सत बार इंद्र की पदवी प्राप्त कर चुका है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: मैं इस करके नहीं हस रहा, कीड़ा क्यों है? यह तो परमेश्वर की रचना है, यह तो परमात्मा की रचना है। कोई निर्धन है, कोई सरदन है, कोई कुछ बनाया, कोई कुछ बनाया, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किसी जूनी विच पाया, कोई किसी जूनी दे विच पाया, तां परमात्मा दी आश्चर्य रचना है जो ये संसार दी रचना रची हुई है। कुदरत है, जो कुदरत दा जो खेल ये परमात्मा ने रचया होया है अनेकां स्वरूपां दे विच। सो इस करके नहीं मैं हस रहा, इस करके हस रहे हैं असी तां, श्री राम जी कहने लगे, यह कीड़ा जिस तों अज यह दीवार ते नहीं चढ़िया जा रहा, बेचारा कीट जूनी दे विच पिया होया है, जिसकी लत्तां टुटियां हुई हैं, फिर डिग पैंदा, फिर कोशिश करता, यह सत बार इंद्र बन चुका है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: इंद्र की पदवी, एक राजा महाराजा इस दुनिया के साध संग इंद्र के सामने इस भोग पदार्थ तुच्छ हैं, कुछ भी नहीं हैं। स्वर्ग लोक दे, स्वर्ग लोक दे जो पदार्थ हैं उन्होंने सामने ये दुनियावी पदार्थ कुछ भी मायना नहीं रखते हैं। यह सत बार इंद्र की प्राप्ति कर चुका है, परंतु फिर अज इसकी की हालत है, इसकी की हालत है, की दशा है, कीड़ा बनया है? कहते असी तो इस करके हस रहे हैं। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: ब्रह्म ज्ञानी पुरुष, सो सात संगत नव खंडन को राज कमावा अंत चला गुहारी। परमात्मा दी, परमात्मा दे नाम जपन तो बिना, ज्ञान तो बिना, गुरु तो बिना इस मनुख दी की हालत हुंदी है, की दशा हुंदी है, कितना योड़ा क्यों बन जावे। गुरु अमरदास महाराज कहिंदे ने जीव दी हालत की है पूरे गुरु तो बिना? क्यों गुरु नूं मत्था टेकदे हां? क्यों गुरु अगे अरदासां करनियां हन? क्यों गुरु नानक शरीर तो उन्हां दा साडे वर्गा सी, विश्वास नहीं सारिआं नूं आया ते साध संगत, परंतु गुर परमेश्वर एको जान गुरु महाराज कहिंदे हन, इस करके गुरु अगे नमस्कार कर, असीं नमस्कारां करनियां, मत्था टेकणे हां। गुरु परमेश्वर दा दूसरा स्वरूप है गुरु गोबिंद।

तर्म में श्रेष्ठ तर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, छगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल क्रिया, छगल बाणी में अमृत बाणी, हर को जस सुन रसन बखानी, मैं ता कर्म करने सी सिमरन वाली, मैं कुछ कीता भी सही ता रिधियां सिधियां नू प्राप्त करके हंकार दी पंड होर वड़ी कर ली। तन गुरु नानक पातशाह संसार नू तार दे होए जदों वली कंधारी जेड़ा बड़े अहंकार दे नाल चिले कटे तपस्या कीती, रिधियां सिधियां प्राप्त कीतियां, ते अपने जोर दे नाल पानी बंद कीती बैठे। जेड़ा मेरा चेला होवे उसनू ए पानी मिल सकदा है। तन गुरु नानक पातशाह क्योंकि जगत जलंदे नू ठारन जो आए सन, जा पहुंचे वेख लैंदे सन भई किथे सृष्टि नू दुख दिता जा रहा, किथे रब दी साजी होई सृष्टि दुखी है, ते फिर आप जाके सुख वंडदे सन। पापी नू मारिया नहीं, पापी नू तार देना। जिथे भी पुन्ना दा गलत इस्तेमाल हो रहा सी, पुन्ना नू पुन्ना वाले पासे जोड़ दिता। वली कंधारी कर्म कांड करके पत्थर ते बैठ के बड़ियां रिधियां सिद्धियां विखांदियां विखांदियां पत्थर ते बैठा होया, आप भी पत्थर हो चुका सी। धन गुरु नानक पातशाह जी ने मरदाने नू भेजिया, जा मरदानिया पानी लैके आ। मरदाना एक वेरी गया, दूजी वेरी गया, तीजी वेरी गया, बड़े अहंकार दे नाल कहन लगा जे इतना ही तेरा गुरु शक्तिवान है ता आप क्यों नहीं कढ लैंदा पानी, तू मुसलमान होके काफर दी संगत कर रहे, कुछ अकल कर। ते मैं काफर नू पानी नहीं दे सकदा। धन गुरु नानक पातशाह अच्छा अहंकार दूर जो करना सी। मर्दानिया आ दो पत्थर पुट, सत करतार सत करतार नाम जपदिया जदों ए दो पत्थर चुके, तो विचों अमृत रूपी चश्मा फुटिया। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। हुण जितना पानी जितना जल ए काबू विच रख के बैठा सी ना वली कंधारी, सारा दा सारा तले आ गया, उपर जल सुक गया। गुस्से विच आके लोहा लाखा होया होया, मेरियां शक्तियां दा इसनू पता नहीं, मैं की कर सकदा हां, आ मैं हुणे दसदा हां। अपनी शक्ति दे नाल एक वड्डा पत्थर रोड़िया पहाड़ी तो। मर्दाना कहन लगा महाराज कृपा करो मेहर करो, इस पौजल तो बचना बड़ा औखा है। ते धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे मर्दानिया तू करतार नू चेते रख, जलाल विच रहो। करतार दे नाल जेड़े जुड़े रहिंदे हन ना उन्हां दा कोई वाल विंगा नहीं कर सकदा। एदा पर्वत दा पर्वत रुड़ के आ रहा है। ते धन गुरु नानक पातशाह जी ने बख्शिश कीती, कृपा कीती, कोट ब्रह्मंडा दे बांधे जां आपने नदर कीती, तां ए पत्थर नेड़े ही आके जदों रुकिया, तां आपने झट इस पत्थर ते पंजा ला दिता, ते इस तरह लग्या जिवें मोम दे विच पंजा खुब जांदा है। सारा जगत जो वली कंधारी तो दुखी सी, धन गुरु नानक पातशाह जी दे चरणां विच आ जुड़िया। हुण वली कंधारी सोचदा है भई मैं तां कखों होड़ा हो गया, एडियां शक्तियां दा मालक सां, पर मेरी तो कोई भी वाह ना चली। हो सकदा है ए मेरे अहंकार नू दूर करन लई आया होवे, आप खुदा आया होवे, मेरी रिधियां सिद्धियां अहंकार ते क्योंकि पुन्ना ते रिझदा है रब। हो सकदा है मैनू तारन लई मेरियां रिधियां सिद्धियां मेरे अहंकार दे सदके मैनू तारन आया होवे, मन नीवा हो गया।
ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮਸਤਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਦਮ ਬੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹ ਸਾਈਂ ਦਿਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਹੁੰਦਿਆ ਹੁੰਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਮੇਟਣ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਬੰਦ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੀ ਖੁਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਖੁਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤਬ ਸੁਖ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਖੁਦੀ ਮਿੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਬ ਲੋ ਕੋਟ ਉਠਾਈ ਚੱਲੇ ਤਬ ਤੱਕ ਦਾਮ ਭਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਛਿੜਤੇ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਾਨ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੁੰਗੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੰਘ ਜਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ, ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ। ਉਹ ਪੰਡ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਤੱਕ ਪੋਟ ਉਠਾਈ ਚੱਲੇ ਤਬ ਤੱਕ ਦਾਮ ਭਰੇ। ਪੋਟ ਡਾਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਦੇ। ਪੋਟ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ

तारदे होए जिथे जिथे भी गए वड़े तो वड़े पापी नू किवें तारिया जिवें सज्जन नू संत बना दिता भूमिए चोर नू साधु बना दिता आप ही नहीं अनेकां नू गुरु नानक दे चरणां नाल जोड़न वाला बना दिता दीपालपुर दे कोड़ी दे पास गए तां उस नू भी फिर यही शुभ उपदेश दिता पाई जिस वाहिगुरु ने तैनू सोना ए मनुच्छा जन्म बख्शिया सी अखां नक कन मूह आरोग कंचन वर्गा शरीर दिता सी जे तू शुकराना कर दो जे तू उसका सिमरन कर दो ता आज तेरी ए हालत ना होंदी बचपन खेड़ा विच जवानी विकारा विच तै बतीत कर दिती उस अकाल पुरख वाहेगुरु नू तू भुल गयो विसार दिता ते जदों तू विसारिया ता फिर दुखा ने आ घेरा कत्या ते आज तेरी ए हालत हो गई याद रख जिस तरह हुन तेरा शरीर कोड़ी है ना तेनू कोई नाल नहीं बैठन देंदा शहरों बाहर कढ दिता है लोगों ने तेनू जदों तू पांच भूतक शरीर त्याग के जावेगा आत्मा तेरी कलंकित हुई होवेगी दरगाह विच भी तेनू कोई कोल ना बैठ देवेगा क्योंकि कोल ओही बैठते हैं जिन्नी तेरा नाम ध्याया धन गुरु नानक पातशाह कहिंदे ने जिसा ने अकाल पुरख वाहेगुरु का नाम ध्यावना कीता है सिमरन कीता है इसलिए उन्हां दा ही आउणा सफल होया है।

ऐसा विचार करो, हम भी ऐसे बगीचे के बूटे बन जाएं जिस बगीचे के बूटों को वासना रहित फल लगता है, निर्वाण पद प्राप्त होता है। ऐसा फल जिसमें नाम रस है, नाम रस के अलावा और कोई भी वासना नहीं, और ऐसे गुरु को नमस्कार करें जो ऐसा माली है, जो इन बूटों को अमृत से सींचता है। देखना, इस बगीचे के बाहर जाकर देखो, आसपास बिखुआ के कुंटा, बाहर ईर्ष्या है, दुविधा है, कपट है, छल है, बाहर तो जहर है। इसीलिए हमें चेतन करते बोले, देखना इसके भीतर आपको अमृत से सींचा जाता है। वो ऐसा अमृत जिसने आपको अमर करना है, जिसने आपको जन्म मरण के चक्कर से बचाना है, आवागौण से बचाना है। और ऐसा है जो गुरु की नजर में फूलता है, उस बूटे को ऐसा फल प्राप्त होता है जिस फल से वो सच प्रकट हो जाता है, जिस सच से ये बोया गया है। ऐसे मालूम होता है गुरुमुख की टेक जो है, नाम है, ओनली नाम। गुरुमुख की टेक ओनली नाम। गुरुमुख परमात्मा के गुणों की सुगंधि बांटता है, ये गुरुमुख का दान है। गुरुमुख परमेश्वर के नाम की कमाई कर, गुरु शब्द की कमाई कर, अपने मन को, अपनी मत को तो लेता है। ये गुरुमुख का स्नान है। पानी से तो सब नहा लेते हैं, लेकिन जो वाणी से नहाता है वो गुरुमुख है। देखना, पानी से हमने अपने तन को, अपने शरीर को स्नान कराना है। ऐसे नहीं कि हमने स्नान नहीं करना, शरीर को पानी के स्नान की जरूरत है, लेकिन पानी का स्नान के अलावा आपको मन को भी वाणी के स्नान की जरूरत है। आप जितनी देर तक वाणी से स्नान नहीं करते, आपका मन अरोग ना होगा। देखना, जे मन अरोग नहीं, जीवन भी अरोग नहीं। जे जीवन अरोग नहीं, ये काया भी, ये तन भी अरोग ना होगा। सिर्फ हम सोच लें कि सिर्फ तन को अरोग रखें, मन ये तंदुरुस्त ना होगा, ते शरीर भी काम क्रोध काया को गाले, जो कंचन सुहागा टल। मन क्रोध करता है, मन काम करता है, लोभ करता है, लेकिन भोगना तो शरीर को पड़ता है। भोगता शरीर है, इसलिए गुरुमुख
वाणी से स्नान करता है, प्रभु की वाणी से स्नान करता है, अपने मन को भी अपने मत को भी। गुरसिखी का स्नान बताते हुए भाई गुरदास बोले थे, गुरसिखी दा नामना गुरमत लै दुरमत मल तोवै, गुरु की मत लेकर खोटी मत को तो लेना। पितर शब्द अमृत वचन है गुरबानी के, ज्ञान महारस नाई है भाई, मन तन निर्मल होए। गुरु के ज्ञान के महारस में लिव लगाकर स्नान करना, सुरती जोड़कर स्नान करना, मन तो अरोग होगा लेकिन मन के साथ साथ मन के रिश्तेदार, मन के संबंधी जो ज्ञान इंद्रिय हैं वो भी अरोग हो जाएंगे। देखना जे मन पितर हो गया, देखनी भी पितर होगी, बोलना भी पितर होगा, सुनना भी पितर होगा, सुंघना भी पितर होगा और परसना भी पितर होगा। बिना मन की पितर साथे बेशक पानी से कितना स्नान कर लें, इंसान की आंखें तो इंसान जैसी दिखती है लेकिन इंसान की देखनी इंसान जैसी नहीं रहती। इंसान के पांव तो इंसान जैसे दिखते हैं लेकिन इंसान की चाल इंसान जैसी नहीं रहती। इंसान की जबान तो इंसान जैसी दिखती है लेकिन इंसान की बोली इंसान जैसी नहीं रहती। इंसान के हस्त पाव हाथ तो इंसान जैसे दिखते हैं लेकिन इंसान के कर्म इंसान जैसे नहीं रहते। कारण क्या है? पानी से शरीर को तो धो लेता है लेकिन मन को वाणी से नहीं धोता। गुरुमुख ने, गुरु के बगीचे के गुरुमुख ने, प्रभु के बगीचे ए अमृत की बाड़ी के गुरुमुख ने स्नान किया है। ए शरीर सरवर है संतो स्नान करो लिव लाए। परमेश्वर से बिरती जोड़कर देखना ऐसा स्नान किया, अब तो उसकी आंखों के सामने सब में परमात्मा की जोत दिखाई देती है। उसकी देखनी कैसी हो गई? अब तो ये बोलता है, तन मन हुए निहाल जहां गुर देखा सामने। अब तो सुनता है, सुनो सत वाणी। अब तो बोलता है, रसना राम रसायन माती अखुवाई। गुरमुख की टेक नाम ओनली नाम आखो वाहिगुरु, ओनली नाम। गुरमुख परमेश्वर के गुणों की सुगंधी बांटता है, यह गुरमुख का दान है। निरपो होए पजय भगवान, साध संगत मिल कीनो दान आखो वाहिगुरु। ऐसा दान, ऐसा दान करने वाला गुरमुख एक बेनती करता हूं, ये कभी मरता नहीं। आपको भाई गुरमुख कभी नहीं मरता। देखना शरीर जन्मेगा मर जाएगा लेकिन गुरमुख नहीं। आपको भाई मेरे साहब ने बोला, नानक मुए ना आखियां जे गुर कै शब्द समाहे। उन्होंने कदे मरिया होया मत बोलना, गुरमुख को कभी मत बोलना कि गुरमुख मर गया। गुरमुख नहीं मरता, गुरमुख कभी नहीं मरेगा। शरीर मरता है, जो जन्म है सो जानो हुआ, लेकिन ये बोला गोविंद भगत अस्थिर है थिया। जिसने जन्म लिया वो मरेगा लेकिन गुरमुख नहीं।
जो गुरु के शब्द में समा जाए वो मरता नहीं। पितृवाणी में कहा, तिथे काल ना पड़े जिथे गुरु का शब्द अपार। जिथे गुरु का शब्द है उत्थे काल नहीं पो सकता। गुरमुख शरीर नहीं होता, शरीर में रहने वाला होता है। शरीर तो आप भी नहीं, शरीर हम भी नहीं, हम शरीर में रहने वाले हैं। हम तो तब भी थे जब शरीर नहीं था, हम तब भी होंगे जब शरीर ना होगा। गुरमुख शरीर नहीं होता, शरीर आप भी नहीं, शरीर हम भी नहीं। शरीर में रहने वाली रूह जो गुरु के सन्मुख रहती है उसको गुरमुख बोलते हैं। और गुरमुख के स्वरूप को ऐसे बताया गया, जो गुरु के सन्मुख रहता हर बात में गुरु को आगे करता है, अपने जीवन में गुरु की सोच को आगे रख कर जीता है। ऐसे गुरमुख के बारे पितृवाणी में बोले थे। गुरमुख तो यह कहता है, सब कुछ होते हुए भी गुरु के पास जो समरस शक्ति है वो गुरु गुरमुख को दे देता है, लेकिन गुरमुख यह बोलता है, ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर, क्या जानो आखो किच हर किया पेयो कबीर कबीर। पर कबीर जी बोलते हैं गुरमुख के जीवन के लिए, वो तो बोल रहा है ना हम किया ना करेंगे ना हमारा शरीर कुछ कर सकता है। देखो कबीर कबीर अब संसार बोल रहा है, एक कृपा किसकी है जिसका कबीर ने नाम लिया। ये अंदर से मोह ममता मर चुकी है, ये किसने मारी? प्रभु के नाम, जिस प्रभु के नाम की समर्था प्रकट हुई है वो ही करने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ एक मनमुख भी है, कर तो कुछ सकता नहीं लेकिन अपने आप को गिनाता है। वो तो सत्संग में आकर भी आपकी मन की बात मानता है, गुरु की नहीं। वो ये बोलता है हम किया हम करेंगे, हम मूर्ख अखुवाई गवार करने वाला बिसरिया दूजे पाए। कर कुछ सकता नहीं लेकिन मनमुख बोलता है कि हमने किया, हमने सत्संग बुलाया, हमने इकट्ठ किया, हमने बोला, मेरे बोलने से ये बात हुई। मनमुख तो ये बोलता है, जो करने वाला है उसको उसने बिसार दिया है। कर कुछ सकता नहीं, पितृवाणी में ऐसा बोला, कहते गुरमुख मुए जीव दे परवान है, मनमुख जन्म मरा है। देखना, आपने एक वृक्ष देखा, वृक्ष में आपने टाणियां देखी, टाणियों में पत्ते, पत्तियों में फूल, आपने फूलों को फल बनता भी देखा होगा। हवा आती है चूलते हैं, पता पता उसका खेड़े में है, फूल खेड़े में है, उसकी टाणियों भी हवा से चूल चूल कर मस्ती में शोर मचाती हैं। लेकिन उसे टाणियों में एक टाणी तोड़ ले, देखो जन्म तो वृक्ष का हुआ, सब टाणियों का हुआ,
लेक टाणी उससे तोड़ लें, उस टाणी को तोड़कर उसको छील भी लें, अब वो टाणी नहीं रहेगी, वो छड़ी बन जाएगी। हम उसको अब टाणी नहीं बोलेंगे, उसको छड़ी बोलेंगे, लेकिन छड़ी तो मुर्दा होती है, छड़ी तो जीवित नहीं होती, छड़ी को तो फूल नहीं आएंगे, छड़ी को फल नहीं लगेगा, छड़ी जीवित नहीं, छड़ी मुर्दा हो चुकी है, वृक्ष से टूटने से छड़ी मुर्दा होगी, वृक्ष से टूट गई उसका जीवन मर गया, वृक्ष से टूट गई अब वो खिड़ेगी नहीं, वृक्ष से टूट गई फूलेगी नहीं फलेगी नहीं। देखना ये जिस वृक्ष से ये टाणी को तोड़ा गया, दूसरी टाणी को देखो जो अभी भी वृक्ष के साथ है, वो जीवित है, उसमें रस है, वो वृक्ष से रस लेती है, धरती से रस लेती है। क्या हो गया जे पतझड़ आ गई, लेकिन बसंत रुत की फिर कामना है। आखो भाई, जो वृक्ष से जुड़ी है फिर बसंत रुत आ सकती है, उसमें खेड़ा आ सकता है। देखना टाणी का जन्म, छड़ी का जन्म हुआ तो धरती से, लेकिन जन्म लेकर जीवन में एक वृक्ष से जुड़ी रही, एक वृक्ष से टूट गई, जो टूट गई वो मुर्दा हो गई, जो उसके साथ जुड़ी रही वो जीवित रही। ऐसे ही मनमुख वो छड़ी है जो परमेश्वर वृक्ष से टूट गए हैं, उनका नाम साकत है, उनको मनुख नहीं बोलते, मनमुख बोलते हैं, वो मुर्दा है, वो जीवित नहीं, वो आत्मिक तौर पर मर गए हैं, जीवित नहीं, वो छड़ी जैसे हैं, बेशक कितना अपने आप को सवार लें, लेकिन जीवित नहीं, आत्मिक तौर पर जीवित नहीं है, वो मुर्दा है, उनको फल नहीं लगेगा, वो किसी को भी अपनी बगल में सुख नहीं दे सकते, जैसे छड़ी किसी को छांव नहीं दे सकती। छड़ी किसी को पीट तो सकती है, सुख नहीं, मन में किसी को दुखी तो कर सकते हैं, लेकिन सुख नहीं। शायद इसीलिए हमें बोला, मन मुखा नालो टूटी भली, जिन माया मोह प्यार। लेकिन गुरमुख वो छड़ी है, वो टाणी है, जो परमेश्वर वृक्ष से जुड़े हुए हैं। देखो जन्म तो मनुख का भी, जन्म गुरमुख का भी माता की कुख से हुआ है, जन्म एक जैसा है, लेकिन जन्म पाकर जीवन में एक तो प्रभु वृक्ष से टूट गए, एक परमात्मा की याद में जुड़े रहे, जो जुड़े रहे वो तो फल प्राप्त करते हैं, वो खिलते हैं, सदा विकास में रहते हैं। आप विकास में, दूसरे को भी विकास में रखते हैं, लेकिन जो मनमुख हैं, टूट गए, उन्होंने तो अपना जन्म भी बर्बाद कर लिया, अपना जीवन भी निष्फल कर लिया, ऐसे लगता है वो अपना मरना भी निष्फल कर रहे हैं, मरना भी बर्बाद कर रहे हैं, बर्बादी पर हैं, मरना खराब कर रहे हैं। देखो जीवन तो वो है जो जीवन जीते ही हम जीवन जीते हुए अपने ऐसा जीवन जिए, अपने जन्म को भी सवार लें, संसार वाले कहें इनकी माता तो धन है जिसने जन्म दिया है, जीवन में भी धन धन हो ते अपने जीवन में अपने मरने को आप सवार कर चले जाएं, ताकि जाने के बाद सब प्यार से याद करें।
ऐसा ही बोला। गुरमुख मुए जीवदे परवान है, ओता जूंदे भी परवान ते मरण तो बाद भी परवान, पर मनमुख मनमुख जन्म मरा है आखो वाहेगुरु। मनमुख ने अपना जन्म बर्बाद किया है, कैसे पितरबानी में शब्द से हमें समझाते हैं।

सो जन हुए परवान, कुल उधारे अपना। सो जन हुए परवान। कोई समा था किसी से सुगंधी आ रही थी, सुगंधी सूंघने वाले सुगंधी के नजदीक पहुंचे। वैसे सुगंधी का एक स्वभाव भी है, कैसा है? सुगंधी हमेशा ही फूल के नजदीक ले जाती है। जी अगर नजर फूल ना भी आए तो उसकी याद में समो देती। ये सुगंधी का स्वभाव है। सुगंधी आ रही थी, सुगंधी सूंघने वाले जिधर से सुगंधी आ रही थी उधर पहुंच गए। जिसके पास वो फूल था सुगंधी देने वाला, वो बोला, देखना ये सुगंधी इस फूल की है। देखने वाले ने फूल को देखा, उसके खेड़े को देखा, उसकी पत्तियों को देखा, गुलाबी रंग को देखा, बहुत मस्त हुआ, कैसा सुंदर फूल। समय बीत गया, कई सैकड़े वर्ष बीत गए, लेकिन सुगंधी फिर भी आती रही। सुगंधी को सूंघने वाले फिर उसके पास पहुंचे। पहले तो आपने फूल दिखाया था, अब तो आपके पास फूल नहीं है। फूल तो दिखाई नहीं देता, लेकिन सुगंधी कैसे आ रही है? वो बोला, ये बात तो बिल्कुल सत है, हमारे पास फूल नहीं, ना हम फूल को दिखा सकते हैं। जब हमारे पास फूल ही नहीं, दिखाएं क्या? लेकिन ये सुगंधी उस फूल के अत्र की है। अब फूल नहीं है, हमारे पास अत्र है, ये अत्र की सुगंधी है। ऐसे ही मालूम होता है गुरमुख जीवन में सुगंधी बांटते रहे, आंखों भाई सूंघने वाले सूंघते रहे। जितनी देर तक गुरमुख उनको शरीर मिला, उतनी देर तक उस शरीर में सुगंधी का प्रकाश किया। उनका संग करने वाले वो शुभ गुणों की सुगंधी लेते रहे। जो जीवन में दुर्गंध थी, मनुख के भीतर थी, उस दुर्गंध को मिटाने के लिए गुरमुख का संग क्या है? सच का संग, सत का संग, ऐसे विचारों का संग जो सत में प्रवेश करते हैं। गुरमुख का बोलना भी सच, गुरमुख का गाना भी सच, गुरमुख का सुनना भी सच, गुरमुख का देखना भी सच। ऐसे लगता है गुरमुख के पास सच के अलावा कुछ और होता ही नहीं, सच ही सच। सुगंधी लेते रहे, पर कितने वर्ष बीत चुके, गुरमुख का शरीर तो नजर नहीं आएगा, ना आवेगा, लेकिन सुगंधी तो आज भी लेने वाले लेते हैं। आखो भाई, जीव दिया मोया ना बिसरे। आखो भाई, जीते हुए भी सुगंधी देते थे, हम उनको याद करते थे। आखो भाई, ऐसे गुरुमुख सदगुरु का संग करते थे, सदगुरु को अपने जीवन में भी याद करते थे, सदगुरु से गुरु शब्द की सुगंधी लेते थे, गुरबाणी की सुगंधी लेते थे,
गुरु शब्द की विचार की सुगंधी लेते थे, आप देखो शरीर चले भी गए, हम भी वही सतगुरु की, वही शब्द की, वही गुरबाणी की सुगंधि आप भी ले रहे हैं। ऐसे मालूम होता है कि गुरमुख जीते जी भी सुगंधि बांटते हैं, मरने के बाद भी बांटते हैं। गुरमुख जीते जी भी अपने सतगुरु को नहीं भुलाते, मरने के बाद शरीर छोड़ जाते हैं, उनकी याद में बैठने वाले भी उसी ही सतगुरु को याद करते हैं। इसलिए ठीक बोला, गुरमुख मरते ही नहीं। आखो वाहिगुरु, मरेंगे तो हम शरीर मरेंगे, वो कैसे मरेंगे? इसलिए हमें बोला कि देखना गुरमुख की बरसी मत मनाना, आखो वाहिगुरु, गुरमुख की याद मनाना। बरसी तो उसकी मनाएंगे जो मर गया है, शरीर मरा है, गुरमुख तो मरा नहीं। आखो वाहिगुरु, गुरमुख की याद मनाओ, बरसी नहीं। मरत मरता तो है ही नहीं। देखना बंसरी बजती थी, बंसरी बजाने वाले बंसरी बजाते रहे, बहुत बजाई, सुनने वाले बोले बस करो, बहुत हो गया, आपने बंसरी बजा ली, अब तो आराम कर लो। लेकिन बंसरी बजाने वाला रुकता ही नहीं। फिर बोलने वाले बोले आप कुछ खा पी लो, आपको भूख लगी होगी, बाद में बजा लेना। लेकिन बंसरी रुकती नहीं। फिर बोला आप पानी पी लो, प्यास लगी होगी, लेकिन बंसरी बजाने वाला रुकता ही नहीं। ऐसे लगता है अब तो बंसरी बजाने वाले को बजा रही है, बंसरी बजाने वाला बंसरी नहीं बजा रहा। अब ऐसे मालूम होता है कि बंसरी बजाने वाला बंसरी नहीं बजा रहा, बल्कि बंसरी ही बजाने को बजा रही है, बंसरी बजाने वाले को बजा रही है। देखो बंसरी बजाने वाला हीरो हो गया, वो तो बंसरी का रूप हो गया। अब उसको ना भूख है, ना प्यास है, ना आराम है, बिल्कुल हीरो हो गया। ऐसे ही गुरमुख जो शब्द का अभ्यास करते हैं, नाम वाणी का अभ्यास करते हैं, प्रभु की कीर्ति करते हैं, इतना अभ्यास किया शब्द का, इतना अभ्यास किया शब्द का, अभ्यास करते रहे करते रहे करते रहे, ना उनको ऊंग है ना भूख है। आखो भाई, बोला गुरमुख अंतर सहज है, मन चढ़या दसवें आकाश, तिथे ऊंग ना भूख है, हर अमृत नाम सुखवास, नानक दुख सुख व्यापत नहीं, जिते आत्म राम प्रकाश। ना ऊंग है ना भूख है। मैं एक बेनती करूं, गुरमुख को कभी आलस आता ही नहीं। जे हमें आलस आता है तो समझे ना अभी हम गुरमुख नहीं बने। आखो भाई, जिसका गुरु ये बोले आपने अमृत वेले को संभालना है, आलस क्या करेगा? गुरमुख आलसी नहीं होता। जे अगर अभी भी हमें आलस है तो हम गुरमुख नहीं। आखो भाई, मनुख हैं, मनुख आलसी होते हैं आखो भाई, लेकिन गुरमुख नहीं। गुरमुख के जीवन में ना ऊंग है ना भूख। गुरु शब्द का अभ्यास करते करते ही रहे करते ही रहे, गुरु का शब्द का अभ्यास करते करते ऐसे हुआ अब तो ऐसे लगता है अभ्यासी अभ्यास नहीं कर रहा, बल्कि गुरु शब्द अभ्यासी को अभ्यास करा रहा है। अभ्यासी कीर्तन नहीं कर रहा, बल्कि कीर्तन अभ्यासी को कीर्तन करा रहा है। आज नाम वाणी की कमाई अभ्यासी नहीं कर रहा, बल्कि नाम वाणी अभ्यासी को अभ्यास करा रही है। आज देखना अभ्यासी तो जीरो हो गया, अभ्यासी कहां गया? अभ्यासी की मैं मर गई, अब तो सिर्फ तू ही रह गया। आखो भाई, अभ्यासी की मैं मर गई, अब तो सिर्फ तू रह गया। जब मैं था आप नहीं थे, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। अब तो ऐसा हो गया जब मैं ही मर गई, जब
हमारी मेंबर की, केवल तू ही रह गया, फिर तू तो मरता नहीं, मरने वाली तो मर गई, आखो वाहिगुरु, मरने वाली तो मर गई, अब कौन मरेगा, कोई भी नहीं मरेगा, अब कौन मरेगा, मरने वाली मर गई, आखो वाहिगुरु, मरने वाली मैं मर गई, जिसकी मैं नहीं मरी वो जीते ही मर गया, जिसकी गुरु शब्द की कमाई से मैं मर गई वो कभी नहीं मरेगा, गुरुमुख ने मैं मार ली, अब तो कहते हैं गुरुमुख नहीं मरेगा, आखो वाहिगुरु, नानक मुए ना आखिए जे गुर कह शब्द समाए। एक पितर शब्द में बोले, परिसरी जे उबरी हो मैं गई मरा हो, कहिंदे बड़े चंगा होया, पली होगी, चंगा हो गया, साहिब कहिंदे पली सरी बड़ी अच्छी होगी, मैं बच गया, आखो वाहिगुरु, पली सरी जे उबरी, उबरी बच गया, कहिंदे होमे जेड़ी सी ना मेरी मैं मर गई, आखो वाहिगुरु, हुमे गई, हुमे मुई कराओ, मेरे घर विच ही मर गई, आखो वाहिगुरु, मेरे सामने ही मर गई, जे नस जांदी तां शायद फिर वापस आ जानी, मारी गई, आखो वाहिगुरु, हुमे मुई कराओ, मेरे घर चो ही मर गई, आखो वाहिगुरु, जब मेरे घरों मर गई तो मैं बच गया, आखो वाहिगुरु, कहते फिर होया कि जो ये मर गई, कहे दूत लगा फिर चाकरी, आ जेड़े सी ना पांच पहला मैं सताउंदे सी, आखो वाहिगुरु, हुण मेरी सेवा करन लग गए, आखो वाहिगुरु, जिनी देर तक होमे सी मैं सताउंदे सी, पांच बिखादी एक गरीबा राखो राखन हारे, देखो मेरा चित करता सी अमृत वेले उठा, ये लोभ मेरे तो पहले उठ पैंदा सी, एक सवान दो सवानी नाल ये दोनों लोभ रूपी कुत्ता मेरे पहले उठ पैंदा सी, मैं अजे सिमरन नहीं सी करदा, बाणी नहीं सी पढ़दा, पहला भौंकण लग पैंदा सी, आखो वाहिगुरु, हाथ विच मैं पोथियां फड़दा सी ते मन विकार करदा सी, आखो वाहिगुरु, पेख मेरा साधु दा सी, गल्लां बड़ियां चंगियां सी, गल्ली असी चंगियां आचारी बुरियां, आखो वाहिगुरु, गला करके तुम सारे चंगा चंगा आचार दा, क्योंकि होमे मरी नहीं सी, जदों मेरी कोई गल नहीं सी मंदा तो अंदर ईरखा अंदर दुबदा उठ खड़ी होंदी सी, आखो वाहिगुरु, मेरा कदम कदम ए मेरी होमे मरन ना करके ऐसे पासे लै तुरदी सी जिस पासे इंसानियत मरदी सी ते शैतान प्रगट हुंदा सी, आखो मैं की करां, पर कहंदे ऐसी गल हो गई हुमे मर गई घरों ही मर गई, आखो वाहिगुरु, हुण तां हुमे दी लाश पई है, हुमे दी लाश पई पई है, मैनूं कदा डर है, आखो मर गई, हुमे गई मुई कराहो, दूत लगे फिर चाकरी, आ देखो हुण जिहड़े दूत सी हुण तां सेवा विच लग गए, हुण तां एक क्रोध दया दा रूप धारण कर गया, लोभ संतोख दा रूप धारण कर गया, आखो वाहिगुरु, हंकार मोक्ष दा रूप धारण कर गया, काम सत दा रूप धारण कर गया, हुण तां ये पांच मनाए पांच पांच रुस गए पांच वाह वसे, हुण तां ये चाकरी लागे, कहिंदे होया किवें, दूत लगा फिर चाकरी, सतगुरु का विसाओ, जदों मैनूं सतगुरु मिल गए ते सतगुरु दा भरोसा हो गया, सतगुरु दा भरोसा, सतगुरु दे शब्द दा भरोसा, सतगुरु दी बाणी दा भरोसा, सतगुरु दी सिख्या दा भरोसा, सतगुरु दे सोच दा भरोसा, सतगुरु दी सोच सतगुरु दा शब्द है, सतगुरु दा सुभाव सतगुरु दा शब्द है, सुगंधी शब्द दी
ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਗੰਧੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਸ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਐਸਾ ਸੁਗੰਧੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਨੇ ਵਾਲੀ ਮਰ ਗਈ। ਆ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਰਸੀ ਕੈਸੇ ਮਨਾਏ? ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਯਾਦ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਮਤ ਮੋਲਣਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਮਰ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਘਰ ਮੇ ਸਮਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਮੂਹੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਫਿਰ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਭਾਈ ਅੱਜ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਖੀ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਸੁਣਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚ ਕਮਾਏ। ਆਖੋ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ। ਆਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਖੀ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਸੁਣਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ, ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਮੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸੁਹਾਇਆ। ਆਖੋ ਭਾਈ ਆਖੋ ਭਾਈ ਸਾਖੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ।

ऐसा गुरुमुख का जीवन जो जीवन मुक्त हो जाता है प्रभु की आज्ञा को मानकर, ऐसा प्रभु का पुजारी जो जीवन में प्रभु के गुणों की सुगंधि लेकर दूसरों को भी ऐसी सुगंधि बांटता हुआ, ऐसा फूल जो किसी के गल का हार बनकर, किसी के मस्तक का श्रृंगार बनकर कुर्बान हो जाता है। फूल होना भी ऐसा चाहिए, सुगंधि बांटता रहे, तोड़ने वाले के भी गल का हार बन जाए, किसी के मस्तक का श्रृंगार बन जाए। गुरुमुख का जीवन ऐसा ही है, मजलूमों का सहारा बन जाता है, दुखियों का सहारा बन जाता है, उनको सुखों की सुगंधि बांटता हुआ अपने आप को तो कुर्बान कर लेता है, लेकिन शरीर के मरने के बाद भी अपनी सुगंधि जो बांटता रहा जीवन में, वो मरने के बाद भी बांटता रहता है। ऐसा परोपकारी जीवन गुरुमुख का है, जैसा भाई गुरदास ने बोला, गुरुमुख परोपकारी बिरला आया। इत्थे ही विचारां दी समाप्ति है। कीर्तन करते हैं, विचार करते हैं, बाणी पढ़ते हैं, कई प्रकार दिया भुलां हो सकदियां हन, बख्श लेनी। दूसरी बार हिंदी विच व्याख्या करते हुए इस तरह एहसास हुंदा है कि कई बार परमेश्वर दी ऐसी कला वरती है, जदों पितर बाणी अपने विच समो लैंदी है फिर याद नहीं रहता क्या बोलना है क्या नहीं। जे उस समय हम उधर चले जाएं कन्वर्सेशन में, तो अंदर से टूटना पड़ता है, टूट कर बात नहीं बनती। टूटने वाला तो टूट जाएगा, दूसरे को भी तोड़ देगा। इसलिए मैं क्षमा की याचना करता हूं। बोलते बोलते नहीं मालूम रहता क्या बोलना है। भाई ऐसे लगता है बोलने वाला ही बोलता है, उसकी इच्छा है जैसा बोले। हम बैठ भी जाएं, नित की बानी याद करते हैं, लेकिन जे नहीं बोलना चाहता तो बानी स्टेज पे ही भूल जाते हैं। ये याद कराता है तो कई कई वर्षों की बानी चेते की चेते आ जाती है। ऐसे है, हर आपे बोले आप बुलावे। आखो भाई, आपके दर्शन करता हूं तो ऐसे लगता है आपे संगत सद बहाल है। आखो भाई, मैंने आपको नहीं बुलाया, बुलाने वाले ने बुलाया था। आखो भाई, बैठाने वाले ने बिठा लिया, अब समाप्ति हो रही है, आपे विदा करावे, विदाईगी भी आप देगा। आखो भाई, लेकिन इसकी विदाईगी देने का एक बहुत ही बिस्माती रंग है। जब बुलाता है तो अपने आप को बिस्माती रंग में प्रकट करता है, जब आपको भेजता है तो आपके ऊपर बिस्माती रंग प्रकट कर देता है। देखना, बाहर जाने से पहले इस बिस्माती रंग को संभाल लेना। आंखो भाई करो, ये बहुत काम आएगा। बाहर जाकर जो कुछ और रंग है वो काम नहीं आते। वो रंग तो बिंस जाते हैं, मैले हो जाते हैं, उस रंग के ऊपर दूसरा रंग चढ़ जाता है। लेकिन ये रंग जे आप ने संभाल लिया, ना खोया, फिर जब मिलेंगे आपको सुनने का अवसर परमेश्वर और दे देगा, और मेरे भाग जागेंगे
کیونکہ آپ ایسے سننے والے بن جائیں گے، ایسے سروتے بن جائیں گے کہ سروتے میں بہت شکتی ہے۔ جے سروتا اچھا مل جائے، وشمادی رنگ والا مل جائے، بکتے کے اندر جو کچھ ہوتا ہے سب باہر نکال لیتا ہے، اندر نہیں رہنے دیتا۔ یہ سچائی ہے۔ جے سروتا وشمادی رنگ میں سنے، بکتا جو مرضی لکونا چاہے اندر نہیں لکو سکتا، وہ پرگٹ ہو جائے گا۔ سروتے نے اندر سے باہر نکال دینا ہے۔ میری تو یہ پرارتھنا ہے آپ کو ایسا ہی سروتا بنائے، جب پھر افسر ملے میں آپ کے درشن کروں تو مجھے لگے کہ آپ ایسے سروتے ہیں، اب تو صرف اندر سے جو پرمیشر نے اندر دیا ہے آپ اس کو باہر ہی نکالیں گے نہیں، بلکہ ایک میں ایک ہو جائیں گے۔ آنکھوں بھائی آپ کے سننے والے تے سنانے والے میں انتر ختم ہو جائے گا۔ آنکھوں بھائی یہ میری پرارتھنا ہے۔ آؤ انند صاحب جی کا پاٹھ۔ رام کلی محلہ تیجا انند، ایک اوہنکار ستگر پرساد۔

तेरा कट कट के अंतर की जान तुपरा मेरा अंतर जामी जान कट कट के अंतर की जान तुपाले।

खसम हमारा तब मेरा अंतर जामी जान। मेरा खसम कैसा है, मेरा मालिक कैसा है, अंतर्जामी करने हारा सब कुछ करन करान वाला उपापी। अंतर्जामी करने हारा सोई खसम हमारा ते जिदा एहो जिहा खसम होवे जिदा सब कुछ कर करा रहा होवे ते उहदी कोई मंग रह जांदी, कोई इच्छा रह जांदी, कोई भावना रह जाती नहीं, क्योंकि उहदा मालिक सब कुछ जानता है, सब कुछ आप करन करावन हार है, ते उहनूं ते कमी हो ही नहीं सकती। किनू अंत

को एक राती। मेरा मन इंज तड़प दे, इंज तरस दे, इंज बिलड़ांदा है, ये परमात्मा जिन्ना चिर तेरे दर्शन ना कर लो शांति नहीं मिल, तड़पना चातक दी तरह बिलड़ांदा हां, तल मिलांदा हां मच्छी दी तरह, ऐसी तलफ है परमात्मा जे तेरे दर्शन ना हो ते मैं ते रह ही नहीं सकता, जीवित नहीं रह सकता, मर जावां। कैसा प्यार है, कैसी तड़प है, कैसी लगन है कि साडे अंदर भी है ऐसी लगन, है साडे अंदर ऐसा प्यार, ऐसी जज्बात जरा अपनी मन अंदर चाती ते मार के वेखी, कि साडे मन अंदर ऐसा प्यार है कि गुरु असी तेरे दर्शना तो बिना रह नहीं सकते, जिन्ना चिर तेरे दर्शन ना करिए जीवित नहीं होंगे, मर जाने बहुत घट है।

कि परमात्मा जे तेरा गुरु दरबार नहीं तो कोई भी चीज नहीं, जे तेरे दर्शन हो गए नहीं तो सब कुछ सफल। ऐसा नियम बनाना है, ऐसा मन अंदर अकीदा करना है कि सतगुरु हर बिन रह ना सको एक राती, जो बिन अमल है अमली मर्द आई है त्यों हर बिन हम मर जाती। ऐसी सतगुरु साडे ते मेहर कर दे। साहबान ते बना उपदेश दिता एक कड़ी ना मिलते ता कल युग होता। परमात्मा एक रात ते किते रहेंगी जे एक कड़ी भी मैनू दर्शन ना ना होण ते मेरे लिए ते कल युग सामने आके खड़ा हो जाए, मेरी हालत किहो जी हो जाती है। परमात्मा ये दर्शन मेरे को ना खो, मेरे ते दर्शन की कृपा करी रख। आओ असी बेनती करनी है।

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के चरण कमलों के नमस्कार। हजूर बाबा जी अपने इस अमृतमय वचन दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, वो साढ़े प्रीवियस कीर्तना की जो लड़ी है उसके नाल संबंधित है। इस शब्द दे विच आख्या है कि क्या तुद कर्म कमाया है, कि तू की आके कीता है। इसका भाव कि कुछ करन दे वास्ते ये शरीर प्राप्त होया सी, इसका भाव देर वाज वेरी इंपॉर्टेंट मिशन इन लाइफ टू बी कंप्लीटेड। देर वार सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू बी डन, ए जर्नी टू बी कंप्लीटेड, ए ड्यूटी टू बी फुलफिल्ड। कहते हैं हूं तक तू दस उस संबंध दे विच तू कुछ कीता है, की कीता है। इस शरीर मेरिया इस जग में आए के इस जगत दे विच आके क्या तुद कर्म कमाए, की कर्म तू कमाया है, की कीता है। और कल का जो कीर्तन सी उस शब्द दे विच महाराज जी ने आख्या सी अंधले क्या पाया जग आए, जगत दे विच आके तू की पाया है। विचार इक्को ही है। अज तीसरे जामे च गुरु नानक देव जी आख रहे हैं कि तू की कम कीता है। भाई गुरु नानक साहब कल दे शब्द दे विच फरमा रहे सन कि अंधले क्या पाया जागाए, तेन शरीर मिलिया सी उस शरीर दे नाल तू की पाया है, की अचीव कीता है। देखते हैं कि यह शरीर तेन दिता सी इस दे नाल तू कुछ खास पाना सी, तू कोई कम करना सी, तू कुछ लाहा खटना सी, जिस दे वास्ते ए इंस्ट्रूमेंट दिता गया सी। पर कहते हैं ए इंस्ट्रूमेंट ही तू बिगाड़ लिया है, भूंडी चाल इसकी चाल खराब हो गई है, सुनी तरह तुरदा ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी सारी दी सारी ओहो गलत

this is what we have done. ऐसी किया है. स्वाद, सेंसुअल प्लेजर्स, बाद लड़ाई झगड़ा, माए बाप पूत हित प्राता, कहते हैं किसी ही बात का हाथ किसी ही पैर, सगले लर लर मुआ, बाद बाद विवाद, हरेक दे जीवन च बाद विवाद है, हरेक दे जीवन च बाद विवाद, किसे दी किसे नाल नहीं बनती, किसे दी किसे नाल नहीं बनती, किसे दी पुत्र नाल नहीं बनती, किसे दी धी नाल नहीं बनती, किसे दी सहुरे नाल नहीं बनती, किसे दी सस नाल नहीं बनती, किसे दी पति नाल नहीं बनती, किसे दी पत्नी नाल नहीं बनती, किसे दी किसे नाल नहीं बनती. बाद साडे जीवन च बाद बहुत, झगड़ा बहुत, माए बाप पूत हित प्राता, उन कर कर मिलो दुआ, किसी ही वाद घाट किसी ही पै, सगले लर लर मूह, किसे दे थोड़ा जा घट, किसे दे थोड़ा जा वध, सारे कहंदे लड़ लड़ के मर रहे हन. इस चीज च ए रतन जन्म जिहड़ा गवाया गया, मिलिया किसी होर कारज दे वास्ते. स्वाद बाद ईरख, फिर ईरखा है, ईरखा मद माया अते माया दे नशे दे विच, मद दे विच, स्वाद बाद ईरख मद माया, इन संग लाग रतन जन्म गवाया. इन्हां चीजां दे नाल लग के रतन जन्म गवा दिता. तेनू इस वास्ते दिता सी, तेनू इस वास्ते ये प्राप्त होया सी. प्राप्त इस करके होया सी कि भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया. यही तेरा एक मौका सी गोविंद नू मिलन दा, गोविंद नू मिलन दा.

सो प्रकरण आरंभ किया सी अकाल पुरख वाहिगुरू ने सानू शरीर दिता है ते इस शरीर का कोई खास मिशन है ना ते सानू शरीर दे मुतलक ही पता है कि एक ही वस्तु है ते ना ही सानू मिशन दे मुतलक पता है कि मिशन की है। तो उस दे वास्ते दास ने यह चुनिया सी कि आओ पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विचों असी शरीर दे मुतलक इन्फॉर्मेशन जो सानू दित्ती गई है ओ सरवण करिए उसनू हासिल करिए ओ सुनिए कि ए वस्तु की है शरीर वस्तु की है। तो दास ने आख्या सी कि उस दे लई महाराज जी चों 13 नुक्ते 13 पॉइंट्स जो हन ओ मिलदे हन जिथे सानू ए दस्या जांदा है कि शरीर की है। तो जो मैं कह चुका मैं एक दफा फिर उन्होंने रिपीट करता हां। नंबर एक, शरीर दुर्लभ वस्तु है, दुर्लभ जड़ी ना असी बना सकते हां ना असी खरीद सकते हां, यह सिर्फ अकाल पुरख की कृपा दे नाल प्राप्त हुंदी है, सुते किसी का जोर नहीं है, यह दुर्लभ चीज है। दुर्लभ चीज वो हुंदी जिसकी कोई कीमत ही ना पा सके, दुर्लभ वस्तु है साडे सबना दे पास। और दुर्लभ वस्तु हुंदिया होया असी अपने आप नू बड़े सैड, बड़े डिप्रेस्ड, बड़े मायूस, जिदा साडे पास कुछ भी नहीं है, इस तरह फील करते रहने। हालांकि साडे पास एक दुर्लभ वस्तु है जिहड़ा कि 84 लाख जून नू भी चांस उस नहीं नहीं मिलता जिसका वह साडे पास है, उसकी असी वैल्यू नहीं करते, सानू उसकी कदर कीमत का ही नहीं पता। पहली गल बाबा जी समझाते हैं कि शरीर दुर्लभ है, तुसी महान अमीर हो क्योंकि इस तो वध के जो कीमती शह होर कोई नहीं है। दूसरा नुक्ता अर्ज किया सी कि यह रब की कामणी है, रब की औरत है, रब की पत्नी है। काया कामण अत सवाल्यो फिर वसे जिस नाले, फिर सच्चे ते सदा सुहागण गुरु का शब्द संभाले। ए सच्चे पिर दे अंदर होण दे नाल ए सुहागण है, पर इस सुहागण नू जे पिर तो वाहिगुरु तो दूर लै जाओगे, दुनिया दे विच जाके इस नू गवा दोगे, स्वाद बाद ईरख मद माया दे विच इस नू डोब दोगे, ये कुमला जाएगी। क्योंकि पिर तो दूर लै जाओ पत्नी नू तो वह कुमला जाती, उदास हो जाती, वह मर जाएगी। इस शरीर नू वाहिगुरु की संगत च रखो, साधु संगत च रखो, गुरबाणी की संगत दे विच रखो, तो यह शरीर जो है वह हरिया भरिया होएगा, यह मौलेगा, यह खिलेगा। इसनू अकाल पुरख वाहिगुरु तो दूर लै जाओ, वह इसकी जिंद जान है, यह मायूस हो जाएगा, मायूस हो जाएगा। यह रब की कामणी है, इसनू रब दे नेड़े रखो, इसनू उस तो विछोड़ो ना। तीसरा नुक्ता रखिया सी, यह मंदिर है, काया महल मंदिर घर हर का जिसमें राखी जोत अपार। जिस तरह किसे मंदिर दे नाल ट्रीट करते हो उसे तरह इस दे नाल ट्रीट करो। मंदिर अंदर गाली नहीं दिती जा सकती, इस मंदिर दे नाल भी गाली नहीं दिती जा सकती। जो वस्तुआं इस मंदिर च नहीं लियांदियां जा सकदियां वह वस्तुआं इस मंदिर च भी नहीं पाईयां जा सकदियां। इस मंदिर का सत्र तिरस्कार नहीं किया जा सकता, निरादरी नहीं की जा सकती, इस मंदिर नू भी अब्यूज नहीं किया जा सकता, इस दे लई भी डिसरिस्पैक्टफुल नहीं होया जा सकता। अगला नुक्ता सी, जो सारे ब्रह्मंड दे विच है, सारे यूनिवर्स दे विच है, जो कुदरत दी कला अकल कला भरपूर रहे, सारा जगत सारी रचना वाहिगुरु दी अकल इंटेलिजेंस एंड कला आर्ट, इंटेलिजेंस एंड आर्ट दे नाल सारी जितनी भी रचना है भरी पई है, कहिंदे ओ सारी दी सारी इंटेलिजेंस एंड आर्ट तुहाडे इस शरीर दे विच है, जो खोजे सो पावे, जो उसनू खोजेगा सो पा लेगा। अगला नुक्ता सी कि एक कोड़ी है, शरीर कोड़ी है और तुसी इस दे सवार हो, पर हुण चक्कर उल्टा हो चुका है, जो कोड़ी है वह सवार दे उत्ते सवार होई पई है, वह सवार दा आखा नहीं मनदी है, कहिंदे इस दे उत्ते सवार हो वो भाव, इस दे उत्ते मास्टरी अचीव करो, इस दे स्लेव ना बनो। जदों सानू एडिक्शंस हो जांदियां हन उदों असी बॉडी दे स्लेव हो जाने हां, कहिंदे इस दे स्लेव ना होवो। अगला नुक्ता जो कल छेवां आख्या सी कि यह श्रेष्ठ है, सब तो उत्तम है, बाकी सारियां जूनियां तो कहिंदे पानी भरवाया जा सकता है, यह सब तो ज्यादा उत्तम है।
ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਨੁਕਤਾ, ਸੱਤਵਾਂ ਨੁਕਤਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਧੁੱਬਣੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

शरीर सरोवर भीतर है, शरीर सरोवर दे अंदर। कल दे कीर्तन च असीं विचारिया सी ना कि महाराज जी वो जिहड़ी वस्तु पानी है वो है किथे, वो किथे है? कहिंदे हन अंतर तेरे निधान है तू बाहर वस्त ना पाल। वो निधान, वो खजाना, वो दौलत, वो बादशाहत कहिंदे तेरे अंदर है। अज महाराज सरोवर दी सिमली दे के कह रहे हन कि शरीर सरोवर भीतरे, शरीर एक सरोवर है जिस दे अंदर की है अच्छा है, बहुत कमाल है, बहुत खूबसूरत अच्छा है। कमल अनूप, अनूप दा मतलब है जिसकी कोई मिसाल ही ना दिती जा सकती, अति सुंदर, यूनिक, अनपैरलल्ड। कहिंदे एक कमल है जो इस शरीर रूपी सरोवर दे अंदर है। सानू पता है, तो सानू पता ही नहीं साडा शरीर की है, इस दे विच की है। शरीर सरोवर दे अंदर कहिंदे एक ऐसा खूबसूरत कमल है, एक कमल फुल्लां दे नाल भरिया पिया है, अते इतने वो खूबसूरत हन कि उन्हां दी होर कोई मिसाल नहीं मिलदी। अच्छा महाराज होर की है? कहिंदे परम जोत, ओ जोत जड़ी तमाम जीवां दे विच है, सब मैं जोत, जोत है सोए तिस दे चानन, सब मैं चानन होए, परम जोत, डिवाइन लाइट, सुप्रीम लाइट, परम जोत, पुरखोत्मो, पुरखां दा भी पुरख, पुरख ओतम, अकाल पुरख वाहिगुरु, जो तमाम नारियां नू पुरखां नू पैदा करन वाला पुरख है, ओ परम जोत पुरख ओतमो जांके रेख ना रूप, जिसकी कोई शकल नहीं नजर आती, जिसका कोई रूप रेख रंग आकार नहीं है। कहिंदे जांके रेख ना रूप, ओ इस शरीर रूपी सरोवर दे विच। सो हुण सारे इस पंक्ति नूं दास तों बाद अद्धे दे हिस्से च बोलियो, तां कि असीं अज इह नुक्ता लै के जाइए कि कमाल दी गल है, असीं ते सरोवर बार संगमरमर दे नाल बने होए पाणी दे नाल भरे होयां नूं ही सरोवर समझदे रहे हां, इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब दे शरीर नूं सरोवर आख रहे हां। कहिंदे हन शरीर सरोवर भीतरे, शरीर सरोवर भीतरे अच्छा कमल अनूप, परम ज्योत पुरख ओतमो जांके रेख न रूप। सो ए शरीर एक ओ वस्तु है जो कि शरीर एक सरोवर है, इस सरोवर दे विच रब रूप कमल है, अते इस शरीर रूपी सरोवर दे विच ओ परम ज्योत है, ओ पुरख उत्तम है, पुरखां दा पुरख है, जिसकी कोई रूप रेख रंग आकार नहीं है, फॉर्मलेसनेस दे विच है। तो असा ने अपने इस शरीर रूपी सरोवर दे अंदर जाके इशनान करके, इस शरीर रूपी सरोवर दे अंदर इशनान करना है, शरीर दे अंदर जाना है, अते इस शरीर दी अंदर दी दुनिया जो है, अंदर दा जगत जो है, उस दे विच प्रवेश करके फिर ओ जो रब रूप कमल है उसनु प्राप्त करना है। और जो ही असी उस कमल दे दीदार करते हैं, वो कमल सुगंधी दे नाल, खूबसूरती दे नाल ब्लूम कर रहा है, खिलिया पिया है, अते उस दे नाल जो साड़ी जिंदगी है वो कमल दे फुल वर्गी हो जाती है। अंदर
कमल फुलां दा बगीचा लग जांदा है, अंदर एक बाग खिल जांदा है, तो ये सत पॉइंट आप जी की सेवा दे विच रखे हैं। अगले छे जो हैं वो कल तो असी आरंभ कराएंगे और असी इन्हां नूं नोट कर लईए ताकि सानू ये पता होवे कि शरीर की वस्तु है। ये दुर्लभ है, ये मंदिर है, ये रब की कामणी है, ये एक घोड़ी है जिस दे राही असी अपनी यात्रा नूं तय करना है। ये सब तो उत्तम है, श्रेष्ठ है, जो सारे ब्रह्मंड दे विच है वो इस दे विच है, अते ये एक सरोवर है जिस दे विच रब रूप कमल खिलिया पिया है। असी की कीता है, साड़ी ट्रेजडी की है कि ऐब तन चिकड़ो ए मन मींड को कमल की सार नहीं मूल पाई। शरीर दे विच ऐबां दा, एडिक्शंस दा, स्वादां दा, बुरियां आदतां दा चिकड़ कर लिया है ते मन बस उस चिकड़ चो ही नहीं निकल सकिया, अगां कमल तक को पहुंचा ही नहीं है। कमल की सार नहीं मूल पाई, कमल दी सार ही नहीं पाई। अगले छे नुक्ते आप जी की सेवा च अर्ज करन तो बाद फिर आप जी सेवा च जो कीर्तन होणगे ओ होणगे कि उस कमल तक असी किवें पहुंचना है, उस दे ढंग की हैं, उस दीयां विधियां की हैं, उस कमल नूं खिलाण दे वास्ते कि ओ खिले उस दीयां की रिक्वायरमेंट्स हैं, एक कीर्तन आण वाले दिनां दे विच होणगे। आप जी इसे तरह दर्शन दिओ टाइम सिर ताकि इस लड़ी नूं असी जो है गुरु बाबा जी की कृपा दे नाल संपूर्ण कर सकीए, शरीर नूं जान सकीए ते शरीर दे अंदर जो है उसनूं जान जाइए ते उसका रस्ता समझ लईए ते उस तक किवें पहुंचना है। बस साडी समझ लो मंजिल पूरी हो गई, साडा जीवन सफला हो जाए। फिर मैं रिपीट करा, शरीर नूं समझ लईए और शरीर नूं समझण तो बाद इस नूं सानू साधना पैना है, इस नूं सानू फिर कढ़ना पैना है, इस दे विच चेंजेस लियानियां पैनियां हैं, इस दे विच कई सारियां तब्दीलियां लियानियां पैनियां हैं। महाराज जी आखदे हन तरत काया साध के, ये धरती रूपी काया नूं साधना पैना है, इस उते बहुत सारा काम, बहुत सारी मेहनत करनी पैनी है। वो सारा कुछ अगले कीर्तनां दे विच आएगा। जदों असीं शरीर नूं समझ लवांगे, इस नूं साधना किवें है वह समझ लवांगे, इस शरीर के अंदर की है वह समझ लवांगे, उस तक पहुंचने का रस्ता की है वह सुन लवांगे, समझ लवांगे, उस तों बाद असी उस अंदरले जगत की खूबसूरती नूं एक्सप्लोर कर लवांगे अते जो अंदर साडे वस्तु नूं पाउण नूं महाराज ने किया है उसनूं असी पा लवांगे, जीवन की यात्रा साडी सफल हो जाएगी। भूल चुक दिखेवा प्रेम नाल इस पंक्ति नूं गाओ, ए शरीरा मेरिया इस

करके स्नान करके चले आए हैं। एक दिन चले तुर जाए एकांत रह के अपने सारी चीज मूल मंत्र का जाप करे। संत बड़ा महान बड़ी शक्ति है ये दंगारी मंत्र, जितना जप लाओ ये बड़ा काम। तुरदिया फिरदिया उठदिया बहदिया हर ना ओ नाम वाहिगुरु जी का ये जपांगे सतगुरु दिया मेहरा फिर सानू की मिलेगा साडा जीवन सफला फिर साडा एक लोक दुखी एक परलोक लगाइए उस उपरंत कीर्तन की समाप्ति और

तेरे कर्म तेरी विद एहो जी बना सकदा कि तेनों सत संगत मेल सकदा जिथे जाके तेरा यार वर्गा सुभाव तब्दील हो सकदा गाही क्या को तेनों मैं सत्संग दी विद बना सकदा यार वर्गा सुभाव सत्संग बदला सकदा बड़ी बात है गुरु प्यारे हो।

कीर्तन सिखाण दी तुसी सेवा ले ली है। ये सच्चे पाशाह शुक्र है इन्ने खुले पाठ वंडन दी तुसी सेवा ले ली है। सेवक बने प्यारे ओ कमाई संभालनी सीखनी है ते तुहानू बख्शियां कोलों ही सीखी जाएगी। असी नानक भगती करनी है रावण भगती नहीं करनी। बाबा नंद सिंह जी ने एक करी इनान करते पे एक सज्जन खड़ा सी कोल उदे मन च फुरना बनया मूह नहीं बोलिया कहिंदा बाबा जी का रंग थोड़ा काला है। बाबा जी का रंग काल सावला सी फुरना ही बने फुरना बाबा जी का रंग ना गोरा नहीं है काल सावला जा काला जा। ते बाबा जी गडवी उत्ते पांदे पांदे ना कहंदे की सोचदे मेरा रंग काला है। ते बाबा जी कहंदे पता क्यों काला है पाप कर करके काला हो गया। देखो सवा बारह का इशनान एक सवास बिरथा नहीं जाता पर मन कित्थे रखिया सेवक गुस्सा ना करियो सानू कोई कह दे ना तू काला है या काली है तो मेरा ख्याल दस श्लोक ना सुना लीए तसली नहीं होंगी। महापुरुष का जवाब देखो महापुरुष का जवाब पाप कर करके काला हो गया मैं की करा। वो धारना बनाते सी ना वाहिगुरु काली हो गई नाम तो बिना।

जिन्हां ने मेरा प्रभु पाया है, मैं उदी मिन्त करां, उदा तरला करां, उदे चरण पकड़ां, भई मैनू भी दस केड़े रस्ते तुरां ते मेरा मालक मैनू मिल जावे।

मैं नीर वहे वह चले दी। आज सतगुरां ने प्रीत नूं तोड़िया, जदों सहबे ने अखां खोलियां की तकिया जिस गुरु नूं याद करदा सी सतगुरु सामने खलोते, ते दूरों ही उची उची कहण लगा, सतगुरु मैं सुनिया सी तू गरीब नवाज है, तू निमाणिया नूं मान देना, जेड़े तेनू याद करदिया नूं उन्हां नूं दीदार देना, पर अज जाणिया तू सचमुच ही गरीब नवाज है, तू सचमुच ही निमाणिया नूं मान देना, जेड़े तेनू याद करदिया तू उन्हां नूं दीदार देना। सतगुरां दी दीदार कीते, अज बेड़ी विच सतगुरां ने चरण पाए, बेड़ी दूसरे कंडे लै गया, ते जदो सतगुरु दूसरे कंडे जा खलोते, भाई दया सिंह नाल दे सिख आ गए, ते अज सतगुरां ने इशारा कर दिता, दया सिंह इस गुरु नू, इस गुरु प्यारे नू कुछ कुमोरां दे, गरीब सिख है, मजदूरी करदा, सारा दिन मेहनत करदा, अज साडे प्यार करके इसने मेहनत भी नहीं कीती, कुछ मोहरां दे, भाई दया सिंह ने जेब विचों मोहरां कढ़ियां, ते जदों सैदे नूं मोहरां देण लगा, ते सैदा पुब्बां मार के रो पिया, ते कहण लगा, ओ पाछा ओ मैनूं मोहरां नहीं चाहीदियां, मैनू धन नहीं चाहिदा, दुनिया दे लोक आउंदे हन, मैं उनां नूं भी दरिया पार कराउंना हां, मोहरां दे जांदे हन, धन दे जांदे हन, अज तुसीं आए हो, तुहानूं भी दरिया पार कराया, तुसीं मोहरां दे गए, ते दुनियादारां विच तुहाडे विच फर्क किहड़ा है, मैनू धन नहीं चाहिदा, मैनू मोहरां नहीं चाहीदियां। ते साहब अज प्यार दे विच वस हो के कहण लगे, सहदे आ फिर की चाहिदे, मंग की मंगदे, अज जो तू मंगे तेरी झोली विच ओह दात पा देवां, ते सहदे ने गल विच पाया पल्ला, नेत्रा जो जल वेंदे, ते हाथ जोड़े ते कहिंदे, मोहरां देख के गलो ना ला मैनू, किते शकल ना मेरी विसार छड़ी, अज तुसी आए ते मैं पार कीता, कल नूं मैं आवां मैनू कार छड़ी, बस होर कुछ नहीं तेरे कोलो मंगना, अज तुसी आयो मैं तुहानू दरिया तो पार कीता है, ते कल नू मैं संसार छड़ के आवां, मैनू भव सागर तो पार कर दे, होर कुछ नहीं हो मंगना। ते गुरु कलगीधर पातशाह ने गलवकड़ी विच लिया, ते घुट के कीता प्यार, अज सतगुरु बख्शिश करदे करदे, अज मुस्कुराउंदे होए अज सहदे नू वर दिता, ते साहिबां ने भी कहा, ओ सहदे आ तेरियां गल्लां बड़ियां प्यारियां ने, अज असी आए ते तू पार कीता, जा इक्की कुलां तेरियां तारियां, जा सहदिया तेनू कल्ले नू नहीं, तेरियां इक्की कुलां दा उधार कर देंदा। आओ भाई घर विच ए तू गुरमुख हो जावे, इक्की कुलां दा भी उधार कर देंदा है, घर विच इहो जे प्यार करन वाला किते पैदा हो जावे, दर्शना दी तांग हर वक्त, मन विच वैराग जी दे होवे, इक्की कुलां दा उधार।